प्रभु की जरा गल सुना दे संसार के विकारा के बंधना तो जरा बचावे है कोई ऐसा सज्जन मित्र है कोई ऐसो हमरा मीत सकल समग्री जियो हियो दियो अर्पो अपनो जीत ओदे नाल पक्की सांझ पाव। श्लोक वारा ते वरीक पढ़ने साहबा ने किया जे

विसर गया है मरण, तेनु विसर गया है। जिस वाहिगुरु ने संसार ते भेजिया है उसने सदना भी है, जिस वाहिगुरु ने तेनु अमोलक स्वासा दी पूंजी, हीरे लाला तो महंगे तेरे स्वास, ते उसने हिसाब भी तो मंगना है। उना स्वासा दे लाला नाल कितने को तू नाम दे लाला दे वर्ज कीते हन, उथे ता लेखा पुछा जाना। इसलिए सानू चेता करा रहे हन धन गुरु नानक पातशाह, कहंदे ओ विसर गया है मरना, चेता कर मालिक ने सदना तैनू।

पर छेती घर जावो। इना अमोलक हीरिया लालां तो महंगे श्वासा दे नाल जे तू नाम दा वणज करके जावेगा ता तेरी इज्जत रह आवेगी, तेरा आउना सफल हो जावेगा। जिस कारज दी मालक ने तेनू घल्या है उदी सफलता ही सिमरन विच है, नाम विच है। ऐसा ना होवे अखां नीवियां पाके तू जाके बह जावे जिवें जुआरिया हार के बह जांदा चले जुआरी दोए हाथ जा। हजूर कहिंदे ने इना अमोलक श्वासां दे नाल ओ धन कठा कर जेड़ा इथे भी तेरी सहायता करे। जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावे दरगाह विच भी तेरे नाल होवे। जदों तू आया सैन तेरे कोल श्वासां दी पूंजी सी, ऐसा ना होवे तू जावे ते तेरे हाथ दोवें खाली हो, अपनी प्रतीत भी गवा के जावे। इसलिए हजूर कहिंदे ने आया सें श्वासां दी पूंजी लैके जा तां नाम दा धन खट के जा, फिर तेरा आउणा सफल है।

नाम रूपी अमृत पीता है। ओह ही सुचे रहे हन सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा। ते जे सिमरन नहीं कीता विकारां विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नू ही कलंकित करके जाएगा। किसे माड़े पुरुष नू संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या ऐसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेन कोई कोल ना बहन देवेगा। उचारण करो श्री वाहेगुरु। इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया।

पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाव करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यो कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हो ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

इस महिमा विच मन बिरती एकाग्र करके सुरत द्वारा सतगुरु दे चरणा ते सिर रख दिता है, चरण फड़ ले और महिमा कर रहे हो।

नाक भी बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गई, रसना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गए, जड़ हो गई जीव, हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीव नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जेड़ियां बाहर नहीं दिसदियां, अंदर उन्हां नाड़ां विच धड़कन हो रही है।

0: जप रे, रोम रोम जप रे, रोम रोम जप रे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास, अंदर प्यास।
1: Yes.

हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद। बड़ पागी गुर सतगुरु पाया, गुण गावत परमानंद, जप मन सतनाम।

चार पाप दो सिंह कुंकुम अब कैसे गुन गई जप मन सतना। चार पाप दो सिंह कुंकुम अब कैसे गुन गई ऊठ तो बैठ ठेंगा पर कपित कमूंड लेके।

सदा सतनाम। हलत पलत मुख उज्जल हुई है, जय त्याई हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया तै अपार गत कीनी, बड पागी हर जपना, बड पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है,

मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र शब्द बड़े